बात तो समझ ले, मैं बोलू का मैं आंखों से पढ़ ले। गेम के टॉप पे बैठा, जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले। जिसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, तो कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, या फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो पैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

हो बंदी तो मैं गुड बॉय बन जाता हूँ। उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस, नाउ के मुक काट ऑन टू द नेक्स्ट, ओ प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस, मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस, बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, मुझे समझ का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।

0: उन्होंने टॉय भाई को त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ वार्षिक दिवस के कार्यक्रम में सौगात दिया। नेतृत्व में मुर्दाबाद के नारा सहित बाहर प्रदर्शन में उतरे आसन प्रदर्शन में उतरे पांच सौ राई बाहर प्रहरी नियंत्रण में लिखे विश्वविद्यालय को विशेष समारोह में भाग लिन पे मंत्री पोखरियल लक्ष्य बोलते युवा विभिन्न नाराबाजी और फूलदंगा कर
1: संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण देशभरिबाट 8,35,506